0: Radio NRN 99.1. समय को ख्याल राखौं। 6 बज्यो।
1: खरो विषयमा तरो बहस, नेपाली बहस।
2: यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ।
3: ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक।
4: डिसोम फाइबर नेट।

0: विकास बैंक को विशिष्ट बचत खाता नेपाल को पहिलो डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा।
1: हरी शरण, म लक्ष्मी भुसाल सुनिरहेछु रेडियो एनआरएन 99.1।

कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा। बादशाह नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है। गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

गुड बॉय बन जाता हूँ। उड़ती है खबरें लेता ना स्ट्रेस, गेम का कार्ट ऑन टू द नेक्स्ट, प्लेन है प्राइवेट, लाइफ है ब्लेस, मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस का लगा, रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा।

0: नहर।
1: World Link Group Festivity Offer अब Pound House एक वर्ष को 200 Mbps Internet और Net TV साथ में Dual Band Router Nokia Beacon 1.1 Mesh Router और Net TV Set Top Box मात्र रूप 1200 प्रति महीना में सर्थरू लागू होने चं छिटो बने गई World Link।
2: दमोलिया FM 94.2 समुदाय को

0: ओली एफएम 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ए बहिनी, घर त चिटिक्कै बनाएछौ हैन? यति राम्रो फर्नीचर को सामान कहाँबाट ल्यायौ?
2: कहाँबाट ल्याउनु नि दाई, हाम्रै व्यासचार किसान हार्डवेयर को पछाडी पट्टी रहेको आरती काष्ठ उद्योगबाट ल्याएकी नि।
1: हजुर, हामी कहाँ स्टील को दराज, कुर्सी, टेबल, साथ ही काठ को सोफा, दराज, पलांग, पर्दा, कार्पेट, विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ। आरती काष्ठ उद्योग,
3: ब्यास 4 मेन रोड, दमौली तनहुँ।
1: प्रोप्राइटर विष्णु कुमार श्रेष्ठ। फोन 98 16 16 13 26, 98 4 63 0 56 05, 98 19 11 36 27, 65 65 0